सुना है लोगों से खाटू वाले श्याम जी बुरी से बुरी मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। आ रहा हूँ मैं भी बाबा, अब आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं।

0: 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर।
2: गुड मॉर्निंग सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना दोस्तों फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी, नई सोच और जनहित मुद्दों को लेकर आपके नए प्रोग्राम फेवरेट कार्यक्रम हल्लू फरमाइश को लेकर।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी सर नमस्ते
1: नमस्ते नमस्कार
0: नाम क्या है आपका
1: बाबू खान
0: कहाँ से बात कर रहे हो
1: गंगापुर सिटी लगेरे कोटी
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे
1: रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को
0: सुना रहे

0: सर, चौधरी निर्मल कर रहा हूँ। महावीर जी
1: सर नमस्ते, कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: बरसात नहीं हो रही क्या?
1: हाँ सर, बरसात का मौसम हो रहा है।
0: हो रहा है क्या?
1: हाँ सर।
0: लिखो आज तो जल्दी आ जाएगा ना।
1: हाँ सर बताइए।
0: बादल पे चल के आ।
1: बादल पे चल के?
0: हाँ
1: बादल पे चल के।
0: हाँ
1: ओके सर, हमारे आपकी फरमाइश करेगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: You're welcome.
1: हेलो
0: हाँ जी सर नमस्ते
1: नमस्कार दीदी आज लेट शुरू किया रिकॉर्डिंग आपने
0: सर वो लेट थोड़ा सा फोन खोलाया अभी नेटवर्क की वो हो जाता है थोड़ा परेशानी फोन में
1: हाँ स्विच ऑफ था लेकिन
0: हाँ सर वो मैं खोल तो दिया 9:35 पे खोल दिया परंतु क्या नेटवर्क बहुत धीरे आते हैं मौसम बारिश का हो रहा है ना
1: अच्छा बारिश हो रही है तो राजस्थान में
0: हाँ सर
1: ये तो हाँ जी आज फिल्म का नाम है अफसाना प्यार का
0: हाँ जी
1: उसमें एक गाना है याद तेरी आती है मुझे तड़पाती शायद अलका जी ने गाया है इसको
0: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: थैंक यू दीदी नमस्कार

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: गुलशन।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: बड़ा सुहाना है आज मौसम, मेरे शहर में बरसात है।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करेगा ना

0: में कॉल करने के लिए बहुत बहुत
1: जी। बड़ा सुहाना है आज।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: गुड मॉर्निंग मैडम।
0: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
2: मेरा नाम है महेंद्र कुमार।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगापुर सिटी जी आर गार्ड में।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: वो वाला मैडम गाना, फिल्म का गाना है सुनील शेट्टी का, ममता भरे।
0: ममता भरे
2: ऐसे ही बोला कुछ
0: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए गाना।

0: हेलो। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
0: जी मेरा नाम अक्षत है, मैं गंगापुर से जीआर गारमेंट से बात कर रहा हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी सर?
0: ये गाना है स्याही।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

तेरे बिना मेरी जिंदगी एक अधूरी कहानी थी, उसका मैं आज आखिरी पन्ना लिख रही हूँ। अलविदा।

0: मैम।
1: गुड मॉर्निंग, नाम क्या है आपका?
0: निशा शर्मा, गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: सुन सुन बरसात की धुन।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: लीटन रिजर्व।
1: हाँ हाँ जी मैम, मीनाक्षी रेलवे स्टेशन।
0: कौन सा खाना खाना चाहिए?
1: ले जा ले जा।
0: लीटन रिजर्व।
1: हाँ

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: तो वक्त हो चुका है 10:39 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, आप हमारे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो
1: राधे
0: राधे सर, कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: हाँ जी, मैं ना बांदापरा गांव से डिस्ट्रिक्ट मोबाइल कलेक्टर बोल रहे हैं जी।
0: कहाँ से सर?
1: बांदापरा मोबाइल डिस्ट्रिक्ट जिला अपने आप से बोल रही हूँ।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना जी गदर फिल्म का सुनना जी।
0: गदर गदर मूवी का गाने के बोल।
1: गाने के बोल भी मैं अपनी मर्जी का सुना।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। मैडम मैडम मेरी गल
1: सुनो, मैं पहली बार फोन लगी, मेरा नाम है परमजीत सिंह माधोपुरा।
0: हाँ जी सर, तो लिंक होगी ना आपके पास इसकी?
1: हाँ जी, नहीं मैंने लिंक नहीं हाले, मैंने जगदीश मटू मोड़ वाले बठिंडा जिला, उन्होंने मैंने प्रोग्राम जुड़िया जी।
0: हाँ जी सर, हाँ जी।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: आरती वर्मा, लालपुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे आरती जी?
0: सुसंग्रीत लगी है रातें।
1: कौन? ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: आकाश मीना। नमस्कार मैम।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: आकाश मीना, गंगा पति से बोल रहे मैम।
1: जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: सुनियारा।
1: सुना रहे सर आपकी फरमाइश? गाना

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते मैडम, नमस्ते नमस्ते। रतनलाल बोल रहा हूँ, महू कल आते हैं।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मैडम आप तो वो सुना दो, दिल के झरोके पे तुझको अपना बनाकर रखूंगा, दिल के पास मत वो मेरी जाऊंगा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना
0: टाइम लगेगा मैडम?
1: बस सर थोड़ा सा लगेगा।
0: अच्छा अच्छा ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी सर नमस्ते।
1: नमस्ते मैम।
0: राधे राधे।
1: कैसे आप?
0: ठीक है सर।
1: अच्छा मेरा नाम राम सिंह है मैम।
0: हाँ जी।
1: से बोल रहे हैं।
0: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ये फिल्म का और गाने के बोल रहे चामची महबूबा हो मेरी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिलुखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म का नाम है दोस्ताना और गाने के बोल है बहुत खूबसूरत जवां एक लड़की।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मिल रहा है।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: आशीष सैनी।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: बंदरपुरा।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना?
1: हाँ जी,
0: लाल परिवार।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: जय राम मैम
0: जी। नमस्ते, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम गुल्लू वर्मा।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: बजरंगी तेरे नाम को चोला मैंने ओढ़ लिया।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: जोया मलिक।
0: कहाँ से बात कर रहे?
1: दिमापुर के पीछे।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जाइए सजना।
0: ओके, मैंने सुना रहे हैं आपको।

0: नाम क्या है आपका?
1: अंकित।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: पारो।
0: ओपी से सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
2: लड़ साहब पहले मेरा नाप ले।
3: 32 से 1 सेंटीमीटर ऊपर नहीं जी। 8 साल का एक्सपीरियंस है, फिर तक दे मारे नहीं किसी पर। बता भाई,

0: हेलो
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: जी योगेश जांगड़े, विमे तरह छत्तीसगढ़ से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: मोहब्बतें से सुनवा देंगे हमको हमी से चुराना।
1: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा ना।

0: मरिया की।
1: कहाँ से बात कर रही हो?
0: कौन सी?
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाने की बोल
1: है
0: मस्ती मस्ती
1: मस्ती मस्ती। ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना।
0: धन्यवाद।
1: यू वेलकम।

0: आपका?
1: निकिता।
0: कहाँ से बात कर रहे?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: लव मैरिज करें।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: नाम क्या है आपका?
1: निकिता।
0: कहाँ से बात कर रही हूँ?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: सर नमस्ते, जम्मू से केशव शर्मा।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: अरे आज गाना सुना दीजिए हमें, फिल्म जानी दोस्त का, जीवन बना जीवन।
0: कौन सा सर?
2: जीवन बना जीवन।
0: ओके सर सुना रहे हैं।
2: तेरा
0: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कोमल।
1: कहाँ से बात कर रही हूँ?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: मेरी चुनर उड़ उड़ जाए।

0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: करौली फाटक।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: पतली पतली कमर में।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:59 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमा इसी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम शौर्य शर्मा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: सिटी कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बेरी।

0: हेलो।
1: हाँ जी सर नमस्ते।
0: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्ते सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: गीत सुनना है प्रेम रतन धन पायो का टाइटल सॉन्ग।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: यू वेलकम।

गुड आफ्टरनून दोस्तों दोस्तों वक्त हो चुका है, एक बज चुका है। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नई तराने। नई तरानों के बीचों में कुछ छोटी मोटी खट्टी मीठी वार्तालाप।

पीछे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111। इसके अलावा 9462744762।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी, हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी 98% से अधिक 7 विद्यार्थी 97% से अधिक 28 विद्यार्थी 96% से अधिक 53 विद्यार्थी 95% से अधिक 76 विद्यार्थी 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड RBSE एंड CBSE एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27 लिमिटेड सीट्स।

0: वक्त हो चुका है 2:00 इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी याद 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: दिल से दिल तक 89.6

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: DS साइंस अकेडमी माध्यमिक

कपल, उनके दोस्त इंद्रजीत सक्सेना, एक नजराना पेश।

अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए।

सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला हाँ। अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया, पढ़े लिखो।

करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी मिली छोरी।

दोस्तों हमारी कॉलिंग लाइन चालू है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों गंगापुर सिटी का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और टाइम हो गया है 3:51 और आप सुन रहे हैं मेरे साथ बैक टू बैक गाने।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: दोस्तों आपने ट्यूनिंग किया है 89.6 और आप मेरे साथ सुन रहे थे बैक टू बैक गाने और आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। दोस्तों टाइम हो गया है 3:07

वक्त हो चुका है 4:13 का। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम राजस्थानी 89.63 DTS पर।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: तो वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की पहली फरमाइश लेके आ रही हूँ। कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से। सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो मैम, स्वागत। नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा
1: हूँ। हाँ जी सर, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे।
0: फिल्म का नाम दिल को धड़कने दो और गाना है हेलो हेलो तू जब दौर पे आई भाई सोल्ड मशीन छाई। हेलो हेलो

नमस्ते जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? क्या नाम है? कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? ठीक है सर।

0: हेलो भाई जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर?
0: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिलुसरा से बोल रहा हूँ। जी
1: कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: फिल्म का नाम है याराना और गाने की बोल है सारा जमाना है जिन्हों का दीवाना।

0: हेलो।
1: हाँ, नाम बताइए।
0: निकिता।
1: कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
0: देवा प्यार के गाँव में।
1: छोड़ दिया क्या?

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कार्तिक।
0: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जो तेरे संग।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी तरफ।

0: जंगलापुर।
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
0: जंगलापुर से, और गाना है गल करके।
1: ठीक है।

0: गुड इवनिंग सर, नाम बताइए।
1: मेरा नाम दिव्य सलमानी है।
0: ओके, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: रियर गंगापुर सिटी से मैम।
0: अच्छा, गाना बताइए सर, कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: गाना सुनना चाहते हैं पहली पहली बार मोहब्बत की।
0: ओ

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है कुतुबुद्दीन।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं सर? से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तो बाकी का फिल्म जो है खड़े रही है।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ नाम बताइए।
1: कोमल।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती।
0: आपको कुड़ी मिलेगी सपने में, मुंडा मिलना चाहिए ना मैम।

वक्त हो चुका है 5:05 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग लोग होते हैं यार दुनिया में। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस। और कुछ पिछले महीने की बात है शायद, जहां बेंगलोर में डॉक्टर्स ने एक शख्स के दिमाग से बुलेट निकाला जो उसके दिमाग में 18 साल तक था। भैया गोली बंदूक से चलाई हुई। वैसे मेरे दिमाग में भी पिछले 25 सालों से एक बुलेट है। पापा लेने नहीं दे रहे। पर आपके दिमाग में अगर अमेजिंग गाने सुनने की इच्छा है तो फिर भैया यही बने रहो हमारे साथ रेडियो डीएस 89.6 पे।

0: टाटा गुड बाय गुड बाय गुड बाय। इस ट्यून इन कर रखा 89.6 रेडियो डीएस और मेक्सिको में भैया अजीबो गरीब एक हिस्सा हो गया जहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी में एक डॉगी को एक कुत्ते को वहाँ डिग्री दे दी, खाने में पेडिग्री और डिग्री में डिग्री, लेकिन एक डिग्री इनको कभी नहीं मिल सकता। किस चीज का? ह्यूमन रिसोर्स एचआर का। फिलहाल आप लोग भैया बने रहो, सुनते रहो अमेजिंग गाने रेडियो डीएस 89.6 पे।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

नया दिन बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आरजे खुशी। जो भी लोग जिज्ञासु हैं, उनके मन में भगवान को लेकर एक प्रश्न जरूर आता है कि भगवान अगर सबसे बड़े हैं और धरती पर जब प्रकट होते हैं तो ये कौन है जो भगवान के माता पिता बनकर आते हैं? क्या भगवान से ऊपर भी कोई है? हमारे शास्त्रों के थ्रू हमें पता चलता है कि जो भगवान के माँ बाप, प्रेमी और दोस्त बनकर आते हैं ना, वो कोई और नहीं नित्य सिद्ध भक्त होते हैं, यानी कि वो जो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। भगवान अपने सबसे बड़े भक्तों को ये मौका देते हैं कि वो उनके माता और पिता बनकर आए, दोस्त बनकर आए या प्रेमी बनकर आए। तो अगली बार जब ऐसा प्रश्न कोई आपसे पूछे तो आप उनको बता दीजिएगा कि ये भगवान की दैन्यता है कि वो अपने भक्तों को अपने माता पिता बनने का सौभाग्य देते हैं। मैं हूँ आरजे खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी ही देर में।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: जीवन में हर कोई डर से मुक्ति पाना चाहता है। मैं हूँ आरजे खुशी। अब अपने आप के अंदर भी देख लीजिए, कोई ना कोई डर होगा जो आपको सताता होगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, पूरे विश्व में ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं हो सकता। अब बस यही तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी है कि हम भगवान को समर्पित ही नहीं कर पाते खुद को। अगर किसी तरीके से हमने ये कर दिया ना, तो आप देखेंगे कि आपको किसी भी तरह के डर से मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आप वाकई में डर से मुक्त होना चाहते हैं, तो आज से अभी से भगवान के नाम का निरंतर जाप करना शुरू कर दीजिए। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जो भी टेंशन स्ट्रेस आपको होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। यानी कि जो डर आपके अंदर बहुत ज्यादा था, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और देखते ही देखते एक दिन चला भी जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस नहीं है, ये श्री कृष्ण का प्रॉमिस है श्रीमद् भगवद गीता में। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी।

0: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: ये आलस ना सबसे बड़ा भ्रम है। हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आलस कर लेंगे तो बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन कुछ समय बाद ये आलस ही हमें रिग्रेट फील कराता है। मैं हूँ आरजे खुशी। सुबह सुबह तो हम सबको आलस आता है, और फिर कुछ देर बाद जब हम उठ जाते हैं तो हमें रिग्रेट होता है कि काश जल्दी उठ गए होते, समय से तैयार हो गए होते, काश थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली होती, काश कुछ अच्छा सा पढ़ लिया होता, काश जो अच्छी चीजें फॉलो करने का सोचा था वो आज से शुरू कर लिया होता। यही काश करते करते एक साल निकल जाता है, कई साल निकल जाते हैं, और फिर लोग बोलते हैं कि काश उस उम्र में मैंने आलस नहीं किया होता तो आज मेरा जीवन बहुत बेहतर होता। इसलिए मैंने कहा था यह आलस बहुत बड़ा भ्रम होता है, इसलिए कैसे भी अपने आप को मना लीजिए और इस आलस को अपने जीवन से पूरी तरीके से दूर कर दीजिए। मिलूंगी आपको इसी समय इसी पते पर। मैं हूँ आरजे खुशी।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: समझ आना चाहिए गाना
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: पसंद बजना चाहिए गाना,
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

सुबह की शुरुआत अगर प्रसाद से हो तो दिन कितना अच्छा जाएगा। मैं हूँ आरजे खुशी। ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि प्रसाद की बहुत महत्वता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रसाद होता क्या है? हमारे शास्त्रों से हमें पता चलता है कि प्रसाद केवल वो खाने की चीज नहीं है जो हमने भगवान को अर्पण की है। हमारा पूरा जीवन भी एक प्रसाद हो सकता है। वो हर चीज जो हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं वो प्रसाद बन जाती है। वो हमारी बातें हो सकती है, वो हमारा कर्म हो सकता है, वो हमारे रिश्ते हो सकते हैं, वो हमारा पूरा जीवन हो सकता है। तो सोचिए कितनी ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में प्रसाद बना सकते हैं। लौटूंगी थोड़ी देर में, सुनते रहिए। मैं हूँ आरजे खुशी।

0: हर इंसान अपने आप पे काम करना चाहता है, अपने आप को और ज्यादा जानना चाहता है। मैं हूँ आरजे खुशी, और अगर आप भी अपने आप को जानना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा ये देखिए कि जो भी हम खा रहे हैं उसका प्रभाव हमारी मानसिकता पे क्या पड़ रहा है। हमारे शास्त्रों से हमें ये पता चलता है कि जो भी हम खा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारी मानसिकता पे पड़ता ही पड़ता है। अगर आप गौर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कौन से टाइप का खाना है जो आपको सूट कर रहा है और कौन से टाइप का खाना है जो आपको सूट नहीं कर रहा है। कई बार हम लोग ऐसी चीजें खाने लग जाते हैं जो हमारी मानसिकता खराब कर रही होती है, लेकिन क्योंकि हम ध्यान नहीं देते तो हमें पता नहीं चलता। और अगर हमने इस छोटी सी बात पे ध्यान देना शुरू कर दिया तो हमारा जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। लौटूंगी थोड़ी देर में, मैं हूँ आरजे खुशी।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: कहते हैं कि अगर जीवन में ऊपर वाले की सहायता चाहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सहायता जरूर कीजिए। मैं हूँ आरजे खुशी, और सहायता का मतलब केवल यही नहीं है कि हम किसी की आर्थिक सहायता कर दें या कोई गरीब हमें मिले तो उसकी ही सहायता करें। हमारे आसपास कितने जने हैं जिनको हमारी जरूरत हो सकती है, जैसे बड़े बूढ़े लोग जिनको चलने में दिक्कत है, जिनको बैठने में दिक्कत है, अगर उनकी सहायता भी हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ऊपर वाले के और करीब जा रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने आसपास ऐसे मौके ढूंढने लगे जहां हमको सहायता करने का मौका मिले। इसी सोच के साथ अभी यहां से जाती हूं, मिलूंगी कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूं आरजे खुशी।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सुप्रभात, नए दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 89.6 डीएस एफएम पे मैं तनिषा। एक बहुत ही खूबसूरत बात आपको बताती हूँ। इंसान का जीवन एक रंगमंच है, जहाँ हर एक पल हमें कई किरदार निभाने पड़ते हैं। इन किरदारों को निभाते निभाते हम थक जाते हैं और अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, जो सफल जीवन के लिए बेहद जरूरी है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारी जिंदगी में निराशावाद भर देता है। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित रहना आवश्यक है, लेकिन निराशावाद एक जाल की तरह लोगों को जकड़ता है और उससे बाहर आना कठिन हो जाता है। नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित और उत्साहित रहना बहुत महत्वपूर्ण है। 89.6 डीएस एफएम पे मैं तनिषा।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएस एफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। हम अक्सर बहुत ही नकारात्मक सोचते हैं, तो बिना सकारात्मकता के कोई भी इंसान सफल नहीं होता है। एक प्रेरित व्यक्ति ही अपना लक्ष्य प्राप्त करता है और समाज में अंधेरे को दूर करता है। भले ही कितनी भी मुश्किल घड़ी हो, एक मोटिवेटेड इंसान ही अंधेरे में खुद रोशनी बनकर दूसरों को पथ प्रदर्शित कर सकता है। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको सकारात्मक चीजों से घिरे रहना चाहिए और सकारात्मक विचार रखना चाहिए।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस

0: आज कुछ सुनाएगा नहीं?
1: तो कहा ही नहीं।
0: अच्छा, जे मैं कहा फिर सुनाएगा?

हेलो दोस्तों, आपने ट्यून 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में आपका रेडियो दोस्त आकाश सौरभ करते हैं कार्यक्रम का समापन और मिलते हैं सुबह प्रातः 5:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।